समय बड़ी कीमती है भजनो सजनो, मारो एक ही भजन है क्यों आप प्रचार करे सामराय गौ माता रो। ये नर्तन जो तुझको मिला है यूं गमाने के काबिल नहीं है, हर सांस अनमोल हीरा है यूं लुटाने के काबिल नहीं है। गाय जिंदे जी सेवा कमाए, गाय जिए जीते दूध देवे, दही देवे, घी देवे, गोबर देवे, गोमूत्र देवे, और मरने के बाद भी उसका हड्डी और चमड़ी काम आवे।

0: पतनो गुण बिना पशु समान अजिया गलतनो मिनख मूंगो जान राखे मिनख पनो। तो गाय जिंदगी सेवा कमाए, मरकर भी काम आए, नर तेरा जिस्म मरने के बाद काम आने के काबिल नहीं है। इंसान को गणित समय को टाइम इज मनी, समय ही धन है। क्यों मैं एक भजन रखी हो आपने, इंसान को इंसान होना नहीं आया। हंसते तो सभी खिल खिल, पर दूसरों के दर्द पर रोना नहीं आया। बाहर से कपड़ा सभी धोते हैं, अपना अंतकण धोना नहीं आया। भर पेट तो सभी खाते हैं, आगे के लिए कुछ बोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, मगर आज तक गोना नहीं आया। यानी सद्बुद्धि को नहीं आई, गाय के प्रति आस्था को नहीं आई। भगवान ने ऐसी सुंदर मूर्त गढ़ी है 9 महीने में, भगवान ने ऐसी सुंदर मूर्त गढ़ी है 9 महीने में। गड़कर के निज देव बिठाया तुम्हारे सीने में, इसको छोड़कर लगे हैं मृग जल को पीने में। अंतर आत्मा को छोड़ भटकते काशी मक्का मदीने में। सुजनो भगवान ने दी ऐसी सुंदर काया, तेरे लिए क्या क्या बनाया, पर तू उस दाता को भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। कुकर्मों में लट्टू है एहसान खर्च करता उन पर भी पैसा। गौ माता के प्रति कोई संत आश्रम में, कोई अनाथ आश्रम में कोनी पैसा खर्च रहे, दुर्व्यसन में पैसा खर्च करे लोग। कुकर्मों में लट्टू है एहसान खर्च करता उन पर भी पैसा, ये मिले अनमोल बिना मोल सत्संग, पर तू इसमें जाने के काबिल नहीं है। बरा ये सत्संग का दरिया, नाइलो जिसका जी चाहे, जिगर है दाग पाप का, धोइलो जिसका जी चाहे। झूठ बोले गप्पे उड़ाए, गंदे गीत मस्ती से गाए, भगवान का कीर्तन कौन करे, सदगुरु का गुणगान कौन करे, अशुद्ध गीत गावे, मुनि बदनाम हो गई डार्लिंग तेरे लिए। झूठ बोले गप्पे उड़ाए, गंदे गीत मस्ती से गाए, अब ये तेरी जीभ प्रभु के गुण गाने के काबिल नहीं है। हाँ सोच ले, एक दिन रोना पड़ेगा, जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। सोच ले, एक दिन रोना पड़ेगा, नरकगामी होना पड़ेगा। होगा जो तेरा बुरा हाल ऐसा जो बताने के काबिल नहीं है। फालतू सिर पर बोझ लिए फिरते, बार बार जन्मते और मरते, तेरा मस्तक हो गया इतना बोझिल जो संतों के आगे झुकाने के भी काबिल नहीं है। सत्कर्म से नर्तन मिला है, अच्छे बाग से फूल खिला है। सत्कर्म से नर्तन मिला है, अच्छे बाग से फूल खिला है, पर तूने माँ बाप की सेवा नहीं की तो तू दुनिया में आने के काबिल नहीं है। जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों के एहसान रहने दो। दिल में दया, आंख में शर्म, होठों पर मुस्कान रहने दो। जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों के एहसान रहने दो। दिल में दया, आंख में शर्म, होठों पर मुस्कान रहने दो। जिंदगी में जीने का यही तरीका है दोस्तों, ने तो खुद उदास रहो और ने दूसरों को उदास रहने दो।
1: जय हो।
0: जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और अनिति को त्याग देना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और अनिति को त्याग देना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी ऐसी बना अगर जिंदों में है, वो जिंदगी क्या काम की जो अपना जीवन नहीं बदल दे। जिंदगी में जीना है तो जीने की यकीन कर, सूरज आसमान पर इसे ले आ जमीन पर। एड़ा सत्य कर्म कर, माता पिता की सेवा कर, गौ माता की सेवा कर, तो सूरज तारा पहुंचू मैं। यूं ब्रह्मानंद समझावे बार बार नर्तन नहीं पावे ऐसे सु अवसर को गमावे तो तुम मोक्ष पद पाने के काबिल नहीं है। खूब महापुरुष पधारिया, समय बड़ी कीमती है, टाइम इज मनी एंड मनी इज गोल्ड। अब मैं इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो गौ माते की
1: जय हो।
0: साध्वी जो को पधारिया वारू, आप जो मन संचरण करना जो आपने नाम लेवे जो आप भजन सुनता रहे जो साध्वी जी आप खूब भजनी पधारिया, आप अपरा विचार रखी, आप अपरा प्रवचन, आप अपरा भजन। बोलो राम जी महाराज की
1: जय हो। बैठना है दो गावना है दो जय हो। आप रो कहना मान है।

ए ओलियों दोलियों हंसते घूमता तुरी अठार लग त्यागी हाँ ओलियों दोलियों

0: अनंत कोटि के महापुरुषों की
1: जय हो। अमर वे गया, अमर वे गया।
0: जो मरा श्री अब मन संचालन जो इज्जत दे स्वीकृति दे त्यू भजन सुनावता रहे लोग आप प्रेम सुनता रहे जो
1: जय बोलो गो माता की।
0: यूं है गौ माता है नी गौ माता जकारे घर में गौ माता है और जकारे घर में तुलसी को पौधो है जकां के घर गुरु महाराज की मूर्ति है वो ही घर हिंदू धर्म की संस्कृति में सनातन धर्म में गिनती में आवे और जकां के घर में गाय नहीं है तो सुजनो घनी व्याख्या नहीं करू मैं थोड़ी सी भजन गाऊं नाला ज्यादा है टाइम इज मनी। मैं आप बात बार बार कहूं कि समय धनेर मैं ही ज्यादा बेलड़ा उड़ोदन उचित कौन लागे छोटी सी बात है बड़ी मार्मिक बात है जीवन में काम आवेला। राजा भरतरी जिन टेम रा जोग ले राजपाट ने परित्याग कर दियो राजा भरतरी चक्रवर्ती सम्राट हो
1: जय हो।
0: गोपीचंद और राजा भरतरी मामो भांजा हा तो राजपाट ने उजीन नगरी ने परित्याग कर वन में निकल गो। भगवान भी परीक्षा लेवे स्कूल में बच्चों पढ़े मेरी मास्टर परीक्षा लेवे अर्धवार्षिकन वार्षिकन परीक्षा में पास रहे तो अगली क्लास में एडमिशन है फेल रहे तो एडमिशन नहीं है। तो वीनी तेरे भगवान भी परीक्षा लेवे कि इरो वैराग्य सच्चो है या कच्चो है। तो सजनों महीना डोढ़ महीना तक राजा भरतरी ने अन्न कोन मिलियो महीना डोढ़ महीना तक। हाँ वो वन में फल फूल जी में और नदी सरिता में पानी पियर भजन करे जिसके लागी नाम की नैन बेन कह देता है। एक दिन संयोग को बड़ी मार्मिक बात है ध्यान एक दिन संयोग भी ने सुको रोटी को टुकड़ो मिलियो चार आंगल वो क्यों आज अन्न देव भगवान दर्शन दिया है आज आप भोजन करा जबकि 45 दिन तक अन्न कौन मिलियो 45 दिन तक वो प्रेम भी भोजन ने ग्रहण करन पाचो भजन में बैठो तो भी नगरी को एक शासन करने वालो राजा हो आपरा कामदार ले वन में घूमने वास्ते गियो वो राजा भी राजा भरतरी ने सुको टुकड़ो ने खावता देखियो जन आपरा कामदार ने कियो ओ कोई मगतो है कोई भिकारी है सुकोड़ो टुकड़ो कोई देन के बढ़िया कहीं टकूनी लाया जो कोई तो खावे इनकी तो कोई मगतो है ही कोनी भूखा मरे है थे जा इन्हें कह दो के माने राजा के दरबार में चलो मां के राजा का गढ़ में चलो तन दपाई जिमाई दे वहां भरपेट भोजन करो क्योंकि तुम भिकारी वो कामदार जाए कि मारा राजा साहब रो हुक्म आठा कोनी कोई राजा है लेकिन उसे मालूम नहीं था वो जाए कि मारा राजा साहब रो हुक्म है तुम भूखा मरे तुम भिकारी है मैं तो उनका हूँ भिकारी हृदय की जोड़ी भक्ति का देन दान मैं मांग रहा हर वारी मैं उनका हूँ भिकारी मेरी मोक्ष उसी दिन हो गई जब गुरु मिले शुभकारी अब आवे तो मैं सबकी कर दूं चाहे आ जाए जग सारी मैं उनका हूँ भिकारी ए बात मत ओटला तुम भूखा मरे तुम हाल माने गढ़ में जीम ले जन थारा राजा ने पूछ के मने क्यों जिमावो और राजा साहब वो निमंत्रण स्वीकार कौन करे बोध के मन क्यों जिमाओ अरे क्यों कहीं जिमाओ राजा ने धर्म रे जकाऊ जिमावे तुम भिकारी है तुम मगतो है तुम भूखा मरे धर्म रे जन थार राजा ने जाय पूछ के धर्म की माँ कौन है धर्म री माँ कौन है अरे वो स्वीकार कौन कर बो के धर्म री माँ कौन है वो राजा भी बुद्धि जीवी हो बो की धर्म री माँ है दया मन थर माता दया आई जनी तुम्हें जिमाऊं वा जन तर राजन और जाय पूछ के जन धर्म रो बाप कौन है अरे राजन वो माने कौन वो के धर्म रो बाप कौन है जन वो सोचली मन में आपा इन्हें भिकारी समझा भिकारी तो कौन है आ तो चीज तो कोई हीरो तो कोई दूसरो ही है जाय देख के वीर नूर पहली मरा श्री

0: भाई क्या करिए नहीं ओ बगवा बेग एक अग्नि है इमे सब चीज जले ई वास्ते बिरो नूर अबार आला साधु संत के में कोई आलोचना तो कौन कौन आगले संत महात्मा भस्म लगावता शरीर के भस्मी ताकि शरीर भूंडो लागे डाडी यूं बंडावता ताकि कुरूप दी के शरीर में शरीर ने में सजावता कोनी बबूती लगाई ली तो कहीं बीरो नूर बीरो तेज कोई छानो थोड़ो यो तारों की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं सूर्य छिपे नहीं बादल छाया रण चढ़े सूरवीर छिपे नहीं दातार छिपे नहीं गर मंगत आया चंचल नार का नैन छिपे नहीं प्रीत छिपे नहीं पूट दिखाया ये योगी का बाना अनेक करो पने कर्म छिपे नहीं भभूत रमाया जाय प्रणाम करण की ओसा धर्म की माँ है दया और धर्म को बाप है संतोष क्यों जन राजा मणि चार अंगल टुकड़ा में संतोष है जो दस बीस पचास बयसत होई हजार तो लाख मंगेगी जो दस बीस पचास बयसत होई हजार तो लाख मंगेगी कोटि के अरब खरब बये तब धरापति होने की चाह जगेगी उदय अस्त लो राज मिले तो तृष्ण अधि की आगे लगेगी सुंदर एक संतोष बिना सेठ तेरी तो भूख कभी ना भगेगी तो संतोषम परम सुखम गुरु का वचन सदा सिर ऊपर अखे अमर धुन लागी मसंदर प्रताप जति गोरख बोले वो जोग लियो बड़ भागी भरतरी राजा भूप भयो वेरागी इतना कहकर के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ अचानक में कोई आ जाए उसे मेहमान कहते हैं भूख में कुछ मिल जाए उसे पकवान कहते हैं करे किसी निर्धन की मदद उसे धनवान कहते हैं करे जो गौ माता की सेवा वो महादान कहते हैं करता जो माँ बाप की सेवा उसे संतान कहते हैं जिन्होंने अपने आप को जान लिया उसे इंसान कहते हैं आर्ट इज लाइफ
1: जय हो ढोलक वाला पधारा ने ढोलक हाँ ढोलक बजावा होने ढोलक बढ़िया ढोलक बजा

पीला बुसरट वाला पधारो सा, ढोलक बजाय वास्ते पधारो, पीला बुसरट वाला। ओ मारसा, आओ ढोलक बजाओ आओ। अशोक जी ढोलक वाला। चलो ढोलक

0: की, बोलो दीपकण भगवान की
1: जय हो,
0: बोलो माधव कृष्ण भगवान की
1: जय हो,
0: विश्व गुरु महेश्वरन जी महाराज की
1: जय हो।
2: हेलो।

की जय हो देव देव पुरी सा महाराज की जय हो, महात्मा नंद जी महाराज की जय हो, स्वामी श्री मेश्वरानंद जी महाराज की जय हो। सत स्वागम कीजिए और तजिए लो भयंकार, भूल सुख परी धीरे अण सत्री संगत रे माय। तप का वर्ष हजार है और सत्री संगत पलये, इनके बराबर पहुंचे नहीं सुखदेव किया विवेक। बोलो सतगुरु भगवान।

नमः स्फटिक महेश्वर देवताभ्यो नमः शिवपरिवार देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवता

कनप्रधान श्री सांब सदा शिव स्फटिक महेश्वर शिव परिवार देवताभ्यो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु निर्विघ्नमस्तु पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। ओं सुमुखश्चैकदन्तश्चैकविलोकजगर्णकः लम्बोदरश्चविकटो विद्नाशो गुणाधिपः दुम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो जाननाथ द्वादश इदानि नामानि यपटे तृणयाद्भि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे नृगमे चा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैवा विघ्नस्तस्य निजायते शुक्लामरतनं देवं दशवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिविचितार्थसिद्ध्यर्थं भोजितो यस्तुरात्मरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शुभे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमो।

अग्रणेश बहिष्पदेवेश ध्रुवेश बहिष्पादनेश अंदनाग्निमहावैष्पदेवेश मरुतपदियाज्मे निकेवलेशमे सारदर्शमे तारकसुपदेशमे वाग्नेवदेशमे हरियोजनवेश जिद्नेगुदाम्न ध्रुतश्चमे जमजाजमे वायव्यानचमे द्रोणक्लेशमे ग्रावानचमे दिगवनचमे कूतवृचमादिवनचमे बेजमे वृद्धमे स्वगाकारचमे जदने लताम्मकृष्मे गर्मशमे अग्निशमे गर्मशमे कृष्णमे सूर्यमे प्राणमे सुमेतचमे पृथ्वीचमे दीदिशमे दीदिशमे देवशमे गोलयासक्वरयोजिशमे जदने लताम्म व्रतंचमरतवशमे संवत्सरशमे होरात्रे उर्वृष्टि विवृधंतरचमे जदने लताम्म एकात्मे तदर्शमे तदर्शमे पंचजमे पंचजमे सप्तजमे सप्तजमे नवजमे नवजमे एकात्मे एकात्मे त्रयोजमे त्रयोजमे पंचजमे पंचजमे सप्तजमे सप्तजमे नवजमे नवजमे एकविकुद्मे एकविकुद्मे त्रयोविकुद्मे त्रयोविकुद्मे पंचविकुद्मे पंचविकुद्मे सप्तविकुद्मे सप्तविकुद्मे नवविकुद्मे नवैकुद्मे एकत्रिकुद्मे एकत्रिकुद्मे चतसृचकुद्मे चिद्विकुद्मे ओम चतसृचमे इष्टौचमे द्वादशमे द्वादशमे घोडशमे घोडशमे विकुद्मे विकुद्मे त्रिविकुद्मे त्रिविकुद्मे अष्टाविकुद्मे अष्टाविकुद्मे द्वात्रिकुद्मे द्वात्रिकुद्मे घटत्रिकुद्मे घटत्रिकुद्मे चतुर्विकुद्मे चतुर्विकुद्मे चतुष्टवारकुजमे चतुष्टवारकुजमे अष्टावारकुजमे चतुर्विकुद्मे त्रयोविंशमे त्रिविंशमे द्विवारकुजमे द्विवारकुजमे पञ्चाविंशमे पञ्चाविंशमे त्रिवत्सजमे त्रिवत्सजमे त्रिजवार्षमे त्रिजौहितमे दद्नेगुदाम्न अष्टवार्षमे अष्टौचमे उक्षाजमे वसाजमर्गजमे बेहुष्मणवामचमे धेनुषमे जगदाम्न ओम बाजाय स्वाहा प्रस्वाय स्वाहा बिजाय स्वाहा कृतवे स्वाहा रतय स्वाहा निन्दाय स्वाहा मुदाय वैन कुजनाय स्वाहा विन कुजनान त्यास स्वाहा अंत्य भुवन सा भुवन सिद्धे स्वाहा दिवते स्वाहा प्रजापते स्वाहा यन्ते रन्द्र इन्द्र सजन उर्जे त्वा वृष्टि त्वा प्रजानान त्वा अधिपत्याय आयुरजद्दिङ्गदां प्राणोजद्दिङ्गदां चक्षुजद्दिङ्गदां कुशरोद्रजद्दिङ्गदां वाग्जद्दिङ्गदां मनोजद्दिङ्गदां आत्माजद्दिङ्गदां ब्रह्म जद्दिङ्गदां ज्योतिर्जद्दिङ्गदां कुस्वरजद्दिङ्गदां पृष्ठञ्जद्दिङ्गदां जद्दिङ्गदां तोमश्च जजुर्प्तदाम च वृक्षरतन्त्रं च स्वरदेवागन्मामृता भूमि प्रजापते प्रजाभूम विट् स्वाहा हरि ओं मारजंबाज प्रभति मनोज प्रभति सांप्राण प्रभति चक्षुर्भ भागो जातौजो मयि प्राण पानो जन्मे छिद्रं चक्षुगो मनसो मनसो बाधितरण्यं बृहस्पतिर्मे दधातु शन्नो भवतु भुवनस्तेजस्पतिः भूर्भुवः स्वः ओंकयानुचराभुवधूति सदावृदा कया सतुष्टयावृदा कृत्वास्तियो मदानं गोष्ठोमत्सदन्दजा दृढाचिदारुजभयो दृढाचिदारुजभसु अभिगुणासखी नामविदाजि दृढामशदम्बुवासि विदुखि कया दुन्नौतिया विप्रमन्दस्य प्रकन्ना कया स्तोद्रव्या भरा इन्द्रो विश्वराजदेशन्नो अस्तुतिपदेशं जगपदेशन्नो मित्रः सन्नो भोत्रजमा सन्न इन्द्रो बृहस्पर सन्नो सन्नो मित्रः शम्भरुणा सन्नो भोत्रजमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिरधि सन्नो विष्णुर्गुमा सन्नो बाधः भवदाग्सन्नुजन्नो अभैवरिको शम्भुवन्द्राशग्र त्रिः वृदाम शन्न इन्द्राग्निभवदामोऽपि शन्न इन्द्राभूगुणा वाजसमुद्रौ सोमासुविदा सञ्जोः शन्नो देवीरुचयापो भवन्तु विदय सञ्जोर्वसनवन्दुना स्योना कृतनो भवान् रक्षरानिवेशने दच्छानः समुद्रापोष्टामयो भुवस्थान ऊर्जिदधातुना महेरणाय चक्षुषे जोभः शिवतमोरस्य बाजयतेना उषधीरिग्मातरस्मारङ्गमवो जसक्षायन्दापोजनयिता जना द्यौः शान्तिरन्तरिक्षो शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरुदया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्विशान्ति द्रवको शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति तृतीयतृगुहमा मृदृशमा चक्षुगा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तामृश्यन्तक्षुगा सर्वाणि भूतानि समीक्ष्य मृदृश्य चक्षुगा समीक्षामहे धृतीयतृगुहमा ज्योक्ते सदृशिव्या संज्योक्ते सन्दृशिव्या संवा नमस्ते हरसौचिके नमस्ते सुवर्जिके अन्यास्ते स्मत्तबन्धोयुतया भावकोस्मभिग्शिवो भव नमस्ते सुविद्युते नमस्ते स्नयितराय नमस्ते भगवन् स्वाहा स्वाहा समीयसे चितोयिता समीयसे ततो नो अभयं कुरु जन्ना कुरु प्रजाभ्यो वैन्ना पशुभ्यः सुमित्रिया न आपवोगतया सन्तु दुर्मित्रिया तन्मयि सन्तु जोस्मान् द्वेष्टिजञ्जभैन्दु महा तच्चक्षुर्देवैदं पुरस्ताद् ब्रह्मचरद वशीमृदाशतं जीवेमृदाशत गूषणो यावृतं प्रभुरास्तमदीना हास्यामृदाशतं भूषदृदास्तात् हरिहि ओम् ृहस्पति सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल्पकृणाय नमः विलकृणाय नमः विलाय नमो बलप्रमदनाय सर्वभूतनाय नमो नाय महागौरेभ्यो गौरेभ्यो गौरगुरुद्रेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते वस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाद्मे महादेव तन्नो रुद्रचोदयात् ईशानसर्वविद्यानां विदुरभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा मे अस्तु सदाशिवं नः शिवो नाम शिवदिते विधानमस्ते सुमामाय कुति निवर्तयाम्याकिन्नाद्य ृदयाशांति शांति देवा
शांत्रुन्मदान्ति द्रवगो शांति।

0: कुछ ना कुछ तो, कुछ तो हाँ न्यास कर लो जब तक।
1: मनोजो दर्जुगता मां दस्ति अभ्रेगस पदर जतने में मंदा नौज बल चंद जतने को निदान दिखे देवा सही मां देन दाम हो प्रतिष्ठा और दिया इन महा अब वो दिखने ही तो बता देना नाम प्रतिदिन हुआ ये दिन का दम मां जब बांग चियान अब बान महा राम बच्चा जर से स्वाहा मुर्दा नंदी वर दिन प्रतिभा भिश्वा नरम रद आजाद गुम्मा कभी कौन सम्राज ना नाम आसन ना पात्र जैन देवा हशिकाय पुष्ट ब्रह्माणि देवर्मणा चादे हम सोमस्तवा राजा मृति नानुपस्ताम्मा उरोर परियो वरणस्ते गृणोते नंदवानु देवा मदंदु कवचायहम ओम विश्वत चक्षुरत विश्वत ओम को विश्वत बाहुरत विश्वत स्पाद संभाव व्यंत मते संपत्र रिद्या वा भूमि जनयन देवैक हानत दाय उजड मानस्तो के तनय मान आग मानो को मानुष जग मानो वीरान रवामिनो बादीरे हविक मंद जनित बाबा मेस्त्रा यफट ओम मृत्युंजय महादेव त्राय माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं गर्भमंदनैः भगवते सांबजदास की वाइन माँ सर्वोपचारार्थ से प्रार्थना नमस्कारान समर्पयामि ओम गौराष्ट्रे सोमनाथं च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यं महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम तेतुमन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यान्तु विश्वे सन्त्रम्ब गङ्गौतमीतुडे हिमालुत केदारं कुष्मेदं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातपटे नरः तप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॐ पूर्वस्वा स्फुटिकमहेश्वरदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे प्रार्थनापूर्वकनमस्कारान्।

0: शिवजी महाराज की जय।
1: ओमकमदीनस्तोत्रम् महिम्न पारन्ते परम विदुषो यज्ञ सदृशी स्तुतिर् ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना त्वयि गिरः अथावाचत्तरवस्त्वमधिपरिणामावधि गृणन् ममापिस्तत्रोत्रे हर निरपवाद परिकर अतीत पन्थानन्तव च महिमा वाङ्मनसयो ददद्व्यावृत्त्यायञ्च कितमपि दत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्या कतिविधगुणः कस्य न विषः विषयः।

त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवासमधिगतसा समधिगतसारम्भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयत अलभ्यापातालेऽप्यलसचिदाङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति कला यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति मधुश्चक्रे बाणपरिजनविधेयस्त्रिभुवन न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितर् त्वरित्वचरणयोर्न कस्यापुण्यत्ते भवति शरसस्त्वय्य वरतिः अखाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयासीद्यस्त्रिनयनविशं संहृतवत सकल्मासा कण्ठे तव न कृतेन श्रियमहो विकारोऽपिश्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिना असिद्धार्था नैवं क्वचिदपि सुदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयनो यस्य विशिखाः सपश्यन्ने सत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरतर्व्यात्मान विश्रुपत्य परिभव महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयमिदं पदं विष्णुर्ब्राह्म्यत्पजि परिभृगुणग्रगुणं मुहूर्दौदौ स्थायत्य निभृतजडाताडितटा जगद्रक्षायै त्वन्नटसि ननुवामैव विबुधा वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोगद्मनुचि प्रवाहो वाराय ऋषुतरलघुदृष्टा शिरसिते जगद्वीपाकारञ्जलदिवलयन्तेन कृतमित्यनेनैवो नेयन्द्रुतमहिमदिव्यन्दभोभु रथक्षोणीयन्ता शतद्रुतिरगेन्द्रोदनुरतो रथाङ्गे चन्द्रार्कौरथचरणपाणिश्वर इति द्विदक्षोऽस्ते को यन्त्रि पुरतृणमाडम्बरविधि विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु प्रतन्त्रा प्रभुतिया हरिस्ते सहस्रं कमलबलिमादाय पदयोर्यदैको ने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेका प्रणितमशौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागृतिजगतां कृतौ सुप्ते जागृत्त्वमसि कृत फलयोगे कृतमतां क्वकर्मवृद्धस्त्वं बलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य कृतुषु बलदानप्रतिभुवं ऋतु श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा श्रुतौ श्रद्धा मद्वा दृढपरिकरा कर्म सजुना क्रियादक्षो दक्षाकृतु पतिरदधिस्थानमृतुभृता मृषीणामार्तुज्यं शरणसदस्यासुरगणाः ऋतुभ्रेस्तत्त्वं क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विदुरमभिचारा हिमकाः प्रजानातन्नाता प्रसमभिगं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतारिरमैश्यभुषा धनुष्पाणैर्यातं दिवो विधवत्राकृतुममुं त्रसन्दन्तेत्यापि त्यजति न मृगव्याधरवसः कुलावण्या संसादृजमनुमन्नाय तृणवत्पुरं पृष्टुं दृष्ट्वा पुरमतपुष्पा युधमु

की जय श्री अलकपुरुषा महादेव की जय श्री देवपुरुषा महादेव की जय दीप नारायण भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय हिंदू धर्म सम्राट स्वामी श्री माधवानंद गुरुजी महाराज की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी श्री महेश्वरानंद गुरुदेव की जय परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री

कबन प्रभुदीप निरंजन सबदु श्री दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति हरिओम।

गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यम्। ओम शांति शांति शांति। अलकपुरी जी महादेव की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की, पूज्य भगवान दीप नारायण महाप्रभु की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन भारत माता की। ब्लेसिड सेल्फ, स्पिरिचुअल सीकर्स, भक्तास, डियर वंस, राउंड द वर्ल्ड, दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम होली लैंड भारत, जाडन राजस्थान पाली, फ्रॉम द गुरुकुल। गुरुकुल मीन्स दैट एजुकेशन सेंटर वेयर द मास्टर द गुरुदेव इज गिविंग द नॉलेज। द स्कूल्स, द कॉलेज, एजुकेशन सेंटर्स ऑल बिगेन विद द ऋषिज। There was no schools in the whole world. It was only taught by the great rishis. And the first university in the world, where was it? Pehli university kahan thi sansar mein? Takshila. तक्षशिला कौन से देश में था? भारत में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज इन इंडिया, तक्षशिला। मैनी मैनी थिंग्स, सो ओके लेट्स गो फर्दर। इन अवर गुरुकुल, ओम श्री विश्वदीप गुरुकुल, वेयर द students are studying from the nursery school, primary school, middle school, high school and college. In this area of Rajasthan, we have one project and many of you know, it's called Gyan Putra. हम अवर गुरुकुल एडॉप्ट्स द स्टूडेंट्स द चिल्ड्रन एज ए मानस पुत्र। एक तो मानस पुत्र होता है जिसको हम हमारी पुत्र के समान आदर करते हैं, प्यार करते हैं, समझते हैं, और वो ही चाहे आप मानस पुत्र कहो या ज्ञान पुत्र, क्योंकि फादर का, बाप का, माँ बाप का फर्ज होता है कि संतान को शिक्षा दें, बिकॉज द पेरेंट्स आर दे हु गिव्स द एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन, the time the school begins from 1st of July. So now our students are coming. But dear ones, you can see many of our Gyan Putra, our students in our hostel still coming, and you see them in the Pitambar
dress, pitambar, like gold. And Bhagavan Krishna used to have pitambar. And you see, pitambar is a color of the flame of the fire. So, the vidyarthi, they are studying. They should not do any wrong things. They are sitting in the fire in this dress. And this dress will not let come in your body and in your mind negative things. So this is a very ancient uniform for the brahmachari, yani vidyarthi, yani student. They have nothing to do except study. Those who studies, their fruits of their study will come in the future. And the future you will be so happy that you had an education which is a cultural traditions, ethics, morals and spiritual education. Indian culture, Indian tradition, Indian education from the ancient time was leading the world into the peace and divine. In the Indian education system, there is no aggressivities. They were not aggressive. So, in our Gurukul, we have a different education, not this modern education where they are only want to work and earn money, earn money, earn money. It is very funny to earn that only money. So, hame to gyanarjan karna hai, paise ki baat nahi karni hai, hum padhenge, paise kamayenge. Ye bhav nahi hona chahiye vidyarthiyon ke andar, kyunki wo paise jo hai, जो तुम सोचते हो वो तुम्हारी विद्या के अंदर है और वो पैसे इतने तुम्हारे मस्तिष्क रूपी बैंक है ये इस बैंक के अंदर में जमा हो जाता है और हाथ में से तो रुपये चोरी करके ले जाए घर में रुपये बड़े चोरी करके ले जाए लेकिन जो मस्तिष्क के अंदर ज्ञान रूपी धन जो है वो कोई नहीं ले जा सकता है इसीलिए विद्यार्थी का एक ही संकल्प होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा बड़ा होकर के मेरे माता पिता मेरी समाज और मेरा गांव मेरा देश और सब पूरे विश्व को शांति का संदेश दूंगा बस तो लक्ष्मी पैसे तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा वो कहना नहीं है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए अगर तुम्हारा अध्ययन इतना अच्छा है तो ये 5 लाख की जगह आपको 15 लाख रुपए देंगे कि लेकिन हमारी कंपनी में काम करो ले वो एक महीना रहा 15 लाख अपाऊ तो थैला में उठी जाए कोई नहीं 15 लाख रुपया उठा सकते हैं हम अरे बहुत तो वो मस्तिष्क में नहीं उठता है 15 करोड़ तो बाहर है कि तुम्हारे सिर पे उठा नहीं सकते हो लेकिन वो 500 करोड़ तुम्हारे मस्तिष्क

मस्तिष्क की रूपी बैंक के अंदर में वो वहां हो जाएगा जमा, और चाहिएगा जितना ही लेते जाओ, और वो पैसे जो है जो हमारे मस्तिष्क में है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे कि कुएं के अंदर पानी का स्रोत है, कितना ही पानी निकालो वो तो पानी अच्छा ताजा पानी आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो ज्ञान जिसने सीखा है गुरुकुल के अंदर भारत की संस्कृति के अनुसार और भारत की विद्या ऋषि मुनियों के अनुसार हम करेंगे तो मालो माल है। सो द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर द लैंग्वेज द फर्स्ट लैंग्वेज व्हाट वी कॉल इज संस्कृति संस्कृत संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड मे बी टू थ्री नॉट एवरीवेयर देयर इज द वर्ड्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज इन मैनी मैनी मैनी मैनी कंट्रीज एंड ऑल्सो द कल्चर गोज फ्रॉम द भारत All these many countries like Europe and there, they were all under the glaciers. They were living here near the Himalaya and near this Indo Valley. Of course, Australia was different and there, but in Australia also were the South Indians, which we call the Aborigines. So, Aborigines ke andar वो उनके अंदर वो मिलता है जैन्स कि वो भारत का है साउथ इंडिया का है। तो कहा है कि सबसे पहला मानव की उत्पत्ति हुई है तिब्बत में, और तिब्बत का अर्थ वो है कि जो जहां पर वेयर देयर इज माउंट कैलाश, और कैलाश के अंदर कौन सा मनुष्य पहला पैदा हुआ? स्वयंभू शिव। आगे वापस वहीं के नहीं, इसलिए हमारा देश इतना है कि उसको कोई छोड़ने की इच्छा नहीं करते हैं। सब कुछ है अपने देश के अंदर में, और ये देश जो है इनका एक एक कण कण मिट्टी के अंदर में देवी देवताओं का वास है। चंदन है मेरे देश की मिट्टी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला है देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा राम है। फिर क्या काम है, वहां तो आराम है, वहां आराम नहीं है। सो मैं अब आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट इन अवर गुरुकुल अवर ज्ञानपुत्र इज हियर, दे आर कमिंग and we are welcoming them, and you are most welcome to help for the education. Thank you very much. And now I would like to give the words to our Mahamandaleshwar Sri Gyaneshwar Puri Ji Maharaj. Gyaneshwar Puri, Gyanesh, Nami Gyan aur Ishwar, do mil jaye to kya chahiye, और ज्ञान नहीं और ईश्वर मिल जाए तो भी वो डबके क्यों है। तो ईश्वर और ज्ञान दोनों का मिलन होता है तब आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार ही हो गया, समझिए। तो नाउ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी एंड इन संस्कृत इन एंड इन क्रोएशियन, चार लैंग्वेज एट वंस स्पीक्स, वही मां मंडलेश्वर बन सकता है बेटा। फोर लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, क्रोएशियन एंड मे बी समवन मोर। सो हमारे ज्ञान पुत्रों को ही विल इंट्रोड्यूस अवर ज्ञान पुत्रास एंड अवर हमारा ब्रह्मचारीज ऑफ दिस आश्रम। सो ज्ञानेश्वर जी, आप बच्चों को गिव द चिल्ड्रन दैट काइंड ऑफ सजेशन एंड इंस्ट्रक्शंस दैट दे गेट इंस्पिरेशन टू स्टडी प्रॉपरली। बैठो। सदीप नारायण भगवान की जय।

Reality, it's actually the subject which is the base of all education, because first we have education from our parents. But now the parents go to work when you are 3-4 months old and you go to some kindergarten. So in this Gurukul, Swamiji is trying to bring back this old tradition, this old Indian tradition of rishis, in which the morality should be included in our, how to say, in education. But from the beginning, not from the end. Not when you go to the university that you start to learn about what is the morality and different ways and so on, but from the beginning. Because now, in our science project, let's say, they can teach you how to make TNT, they can teach you how to make the bomb, gun, or whatever. But they will not teach you why to use it and how to use it. Not how to. They will teach you how to use it, but not why not. So this is the basic problem, which now we can see in all around the world, with all the many, all the things terrible that are happening. So because the people have the knowledge how to use the things in a bad way, but they don't have the mentality to decide that this is good or not good. So this thing Swamiji is trying to achieve in this Gurukul, to have according, because the modern education is modern education, we have to have it to be competitive in this world, but still on top of that, Gurudev is trying to put one more layer, which was actually before, even in our country was there, but then now we have these changes in education. But everything is going for the globalization, how the people can move from one place to another. So the children are actually educated in a very short spectrum. Here I had the opportunity to study with one teacher who was, she was brought up in a Gurukul system. And in a Gurukul, they have studied all the Bhagavad Gitas and Ramayana and Vedas and this and that. So they studied everything. So actually, I know, I have first-hand experience that I know that what they were studying, what they were learning in the Gurukul. And our Pushpaji from Jaipur Ashram, from Jaipur Yog Sadhana Ashram, which you met many times on webcast, she's also studied in Gurukul, which is a completely different system of study than nowadays, which is very commercialized. So these kind of studies we are trying to give to the people, to the children here, and these children will then hopefully try to improve the status of these villages which is around us. Because still the base of the India is in the villages. More than 67% of all population lives in villages. Of course, this is changing, but population, as you know, in India is huge, as I told in the beginning. So we are, Swamiji is trying very hard. It's, of course, very difficult because everybody wants to have computers, everybody wants to study, to have experiments with the chemistry or physics and so on. So this is quite, of course, it's a costly matter to pay the teachers. If you have good teachers, they require more money. If you have good equipment, this requires money and so on. So that's why we are thankful to all the supporters, all the donators who gave the money for this project of Gyanputra. अब आपके पास अब स्कूल में जाते हैं आप स्कूल का समय हो गया चालू भी हो गए आप मैंने आपके सामने बैठ रहे तो कंसंट्रेशन तो है ही नहीं एक जगह में बैठ नहीं सकते नींद तो आती रहती है अभी तो 9 बज गए तो शायद जाने की समय है या स्टडी का समय है यहाँ का प्रॉब्लम है जनरल पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है स्टडी में कि सब लोग जनरली बच्चे सोच रहे हैं कि स्टडी का क्या मतलब है एग्जाम तो आएगा
दिसंबर में एग्जाम आएगा, मार्च में एग्जाम आएगा, अप्रैल में, अभी क्या स्टडी करना है? तो आप ऐसे कीजिए, 365 दिन है, आप आज 6 महीने के लिए खा लेना। एक दिन में 4 रोटी आप लेते हैं, ठीक है, सुबह 2, शाम को 2, ठीक है, मान के चलो 5 रहते, 6 लेते, तो 6 महीने में कितना दिन होगा? 180 दिन। 180 दिन में 5 रोटी एक दिन का हो गया कितना? 900 रोटी। तो ठीक है, आज सुबह हम बना देंगे भंडारा, 900 रोटी सबको खानी है, फिर 6 महीने आप फ्री हो गए खाने से, संभव है? इतनी मामूली चीज है, अब क्या है, 900 रोटी खा लीजिए, क्या है, कोई खास नहीं है। 6 महीना का आपकी भूख नहीं लगेगी, ऐसे नहीं चलता है ना। तो अगर ऐसे नहीं चाहते, आप क्या सोच रहे कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी 365 दिन की पढ़ाई कर सकते हैं, पूरी 6 महीना की पढ़ाई कर सकते हैं एक रात में, वो एक रात भी नहीं, 2 घंटे में। अब यहां से रवाना होकर के 9 बजे बैठेंगे पढ़ाई करने में, 11 बजे समाप्त, सुबह एग्जाम दे देंगे और एकदम 100% मार्क्स आएंगे, संभव है या नहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो पढ़ना होता है रोज, डेली। तो पढ़ाई टुकड़ों में होता है, जैसे खाना टुकड़ों में खाते हैं, हर दिन 5 रोटी खा सकते, कोई टेंशन नहीं, 10 रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन 900 रोटी खा नहीं सकते। तो वैसे ही रोज 900 पेज थोड़ी पढ़ सकते। हमारे पास जयपुर में भी बच्चे आते ओपन स्टडी करते, 3 दिन में 800 पेज की किताब कैसे पढ़ेंगे? इसलिए जो स्टडी कर रहे हैं, अगर डेली हर दिन अगर आप मांग के चलो 1 घंटा पढ़ाई होगा, तो 6 महीना कितना हो गया घंटा? 180 तो हो गया, नहीं हुआ तो 180 घंटा आप एक दिन में कैसे जमा दोगे? तो इसलिए जो पढ़ाई करनी है वो टुकड़ों में करते रहना। अगर डेली 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते, 1 घंटा, कोई चमत्कारी कारण से 2 घंटा पढ़ेंगे, पता नहीं क्या होगा कि अब 3 घंटा भी पढ़ सकते, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आपकी मार्क्स जो आएंगे, आपकी कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं होगी, आपकी जो IAS IPS बनना है सब बन सकते हैं, लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे टुकड़ों में करते रहेंगे, अगर एक साथ में कोशिश करें तो क्या होगा? असंभव। इसलिए आपकी यहां आश्रम में रहते, यहां कोई घर की टेंशन है ही नहीं कि कोई माँ बाप कोई काम बताते नहीं, तो आपका क्या काम होगा? पढ़ाई का। इसलिए माता पिता ने आपको यहां भेजा पढ़ाई करने के लिए, और आप यहां क्या करते? मजे ले रहे, सोते रहते, मोबाइल में मूवी देखते, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ होता है ना, क्यों? जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, जब तक हम हमारे गुरुजी आ है तब तक स्कूल चलेगा, और गुरुजी को कैसे खुश कर सकते हैं? कम से कम कोई तो मार्क्स आए, अगर मार्क्स आएंगे तो कौन, हमारे गुरुदेव भी खुश होंगे और कहा माता पिता खुश नहीं होंगे, अरे मेरा बेटा 95% आ गया, अभी है कोई यहां 95% के, 100% के, 80? इसलिए ये नहीं होता है कि हम पढ़ाई करते अचानक एग्जाम से 1-2-3 दिन पहले, बस एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम में पढ़ाई करना है। अब आप क्या कर सकते हैं? कल तो गुरु पूर्णिमा थी, तो आज से संकल्प ले लो
कि आज से मैं पढ़ाई रोज करूंगा,

Good. Thank you. Thank you and me hunyo. Thank you. And you see the all Vidyarthis and the life throughout the whole world. Right? Now only the हमारे गुरुकुल के बच्चे जो है turn to the camera side. मुंह देखो दूसरे लोग नहीं. Only the Vidyarthi turn to the don't go close to the फिर चेहरा नहीं दिखेगा बेटा. तू इधर आजा खड़ा हो जा. बस बेटा यहीं खड़े होके दे या नजदीक आ जाए बस. ओके वी विल सी व्हेन इज देवेश्वर महादेव की जय. अलकपुरी जी महादेव की जय. हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की

बस अब मेरी तरफ झुक, आज देख लो इस कैमरा में, देखो दिख रहे हो तुम लोग, तुम दिख रहे हो पीछे ये खड़े हो, बैठ जाओ बस, थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी इन द स्कूल व्हेन वी हैव द प्रेयर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स देयर। नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद, दिख रहे हैं सभी के, नहीं दिख रहे? यस, टाइम फॉर प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ अपने यहाँ हर महीने में एक दो बार, और मैं आऊंगा तब तुम्हारे को पूरे संसार की यात्रा करा देंगे स्वामी जी टेलीविजन के वजह से।

शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपं सर्वे मोहनं दीपनं सजते सर्वं संध्या दीपं सर्वसत्यम्। ओम शांति शांति शांति। श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे। A colorful day, the day which begin with peace, harmony, love, understanding, kindness, and spirituality. Today and yesterday evening, we were celebrating a festival called Holi. Yesterday, the day where the Holi was burned, it means the darkness disappeared, light come. Asuri Shaktis, negative energy destroyed, and positive divine energy begins.

0: दीप नारायण भगवान की
1: जय,
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय,
0: माधव कृष्ण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: नरसिंह अवतार भगवान की, भक्त और भगवान की
1: जय।

श्री भगवान की जय। विश्वर महादेव की जय। स्वामी माधव नंद गुरुदेव की जय। विश्वगुरु महामंडल स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव।

0: शांति ही शांति ही शांति ही।
1: विश्वागुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: हरि ओम।

दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरीसा महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।